0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: रणनीति अब आगे की है?
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: जिस कांग्रेस कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 months इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list. Both of them are compromised. Both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है, आज उसके ऊपर भी मीटिंग है। बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तैयारी 403 सीट पर चल रही है, रात दिन काम चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, जो कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
4: आटो हजरातो खवातीन जरा मुआइजा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। और फरमाइए, इसी से खत्म खत्म मतलब खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार, घर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार। यूसीसी आदावर जो है।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी पांच पांच साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने, ये साहिब सिंह लड़का है, इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं तीन बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: रणनीति अब आगे की है?
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: जिस कांग्रेस से कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: रणनीति अब आगे की है?
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अकोमोडेट ऑनलाइन क्लासेस
5: A decision that became the starting point of a much bigger story.
6: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang-raped about 7 minutes from their college.
5: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
7: Even if it's the front of the college or the back side of the college, we are just unsafe.
5: We followed the story. We asked the questions.
8: जो लोग हैं फिजिकली असॉल्ट करते हैं बच्चों को
9: वी नीड द प्रोटेक्शन
10: दैट्स योर मेन डिमांड
5: वी स्टूड अप फॉर हर
11: द फैकल्टी हैज टोल्ड दीस गर्ल्स ऑल ऑफ देम दैट दे कैन नॉट स्पीक टू द प्रेस
5: इंडिया टुडे ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर हर

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन, लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली presenting to the nation with evidence that the chief election commissioner is completely compromised, election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी पांच पांच साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं तीन बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ था, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: Bison panel, one board, infinite users.
4: Mutual funds, sahi hai.
5: गिरनार एक चाय हो जाए।

0: இரண்டு நாள் வராரு, அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே அதிசயத்தை நிகழ்த்தினவர் பேர் ரெண்டு நாள் வராரு. அப்படின்னா அவங்க செயல ரொம்ப பலவீனமா இருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம். அதே நேரத்தில் தாவேக்க ஆட்சிக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு என்கிற எங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாட்டில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்பதையும் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம். ஆகவே இந்த
1: Because if you remember the entire episode that had in fact unfolded when the government was being formed, because TVK was a couple of seats short of forming the government even after having won the majority of votes in Tamil Nadu. Well, yes, the Congress had come on board to provide support right at the beginning. There were certain other parties like the VCK and the left that were a bit hesitant to join hands till the very last minute for that matter. And ever since this government has been formed, there have been several such crack lines that we've seen come up. But left parties have perhaps been seen condemning several of the TVK's actions time and again as we speak. So that has really come to the attention of everybody for that matter as we speak. Anaga Kesav joining me on the broadcast to, in fact, look at this in greater depth. Anaga, very good morning to you. Two things I want you to throw light on. Number one, of course, what has been said by P. Shanmugam and the fact that it shows the kind of tensions brewing between the left parties and the TVK, and it's been brewing for some time now. Number two, how is the TVK's how are the voters viewing TVK in Dharapuram at this given point? Is what P. Shanmugam saying actually holds substance, or it's more of a political rhetoric that's being currently spoken about by him?
2: Well, in fact, it is quite a political rhetoric that we're talking about, because the left parties here, they have decided to field their own candidates despite the fact that they have lent outside support for TVK. The left party leaders are saying that we are unhappy with the fact that TVK has made AIADMK MLAs resign and join TVK and to contest on TVK's ticket. That's literally horse trading, and therefore we are against the TVK government, we're against the TVK party for indulging in this, and therefore the left parties have decided to in fact field their own candidates in both constituencies, Madurantakam and Dharapuram. Therefore that CPIM Shanmugam over there going all out against the TVK, saying that the very candidates of TVK who were previously in AIADMK are being chased out by the voters. For sure, the election results in both these constituencies, Dharapuram and Madurantakam, is not really going to be in favor of TVK. Things are not like before. The TVK is going
1: to lose. I'm very sorry to interrupt you in between, but we are currently learning of a different story. It's BJP MP Sudhanshu Trivedi currently holding a press conference. Let's listen in to what he has to say.
3: मित्रों, अभी आपने देखा कि नास्तिक राहुल गांधी की पार्टी, नास्तिक राहुल गांधी, बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि 2014 के चुनाव में ईश्वर की नाम की शपथ लेने वाले राहुल गांधी ने 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली. अंग्रेजी में शपथ ली, सॉलमली अफर्म, नॉट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड. उस पार्टी के वो नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, जो जुबली हिल के चुनाव में कांग्रेस के दिल का उद्घोष कर चुके हैं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, हैदराबाद के जुबली हिल के बाय इलेक्शन में कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, वो पूरी ताकत से हिंदू समाज को विभाजित करने के हर षड्यंत्र में पूरी तरीके से संलिप्त यह कांग्रेस, जो हिंदू समाज को दक्षिण और उत्तर में विभाजित करना चाहती है, क्योंकि इनके कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश कहते हैं कि दक्षिण टैक्स ज्यादा दे रहा है, उत्तर कम दे रहा है. चिदंबरम साहब ये कह चुके थे कि उत्तर भारत नहीं होता तो दक्षिण बहुत प्रगति करता. यही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी अभी खुद बोल रहे हैं कि हम द्रविडियन हैं, वो आर्यन हैं. ऐसा मूर्खतापूर्ण निराधार सिद्धांत जो अब पूरे विश्व में नकारा जा चुका है, और उन्हें अपने नेताओं का ही नहीं पता है. रेवंत रेड्डी जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद का आर्यों का आदिदेश पढ़िए और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को पढ़िए तो पता लग जाएगा. फिर इतना ही नहीं है, प्रांत में विभाजित करना है. यही रेड्डी साहब बोले थे बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए के बारे में, फिर उसके बाद भाषा पे विभाजित करना है, उसके बाद जाति में विभाजित करना है, और उसके बाद महिला और पुरुष में विभाजित करना है, स्मैश पैट्रियार्की सिर्फ हिंदू समाज के लिए। और जैसे ही केरल का ग्रैंड मुफ्ती बोल देता है कि महिलाओं को तो तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तो स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ने चिंगाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं। मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है, और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अब मैं इसका तथ्यात्मक जवाब देता हूं, फिर शास्त्रीय जवाब भी दूंगा। तथ्यात्मक जवाब यह है कि पता ही नहीं है रेवंत रेड्डी जी को या उनसे कहलवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ की धरती से सांसद हैं, एक नहीं अनेक बार उनके हर हर महादेव करते हुए वीडियो हैं, मगर राहुल गांधी जी का हर हर महादेव करते हुए वीडियो शायद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यह है परम शिव भक्त का चोला और अंदर से मास्क और मैकाले बोला। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें तान खोल के सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव को छुआ था तो उसका नाम उन्होंने पॉइंट शिव शक्ति रखा था। शिव और शक्ति दोनों का की स्थापना का घोष चांद की ऊंचाई तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब वो अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से करने के बाद दूसरी विदेश यात्रा नेपाल में गए थे तो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से निकलकर गले में रुद्राक्ष की माला के साथ त्रिपुंड लगाए हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो फोटो है, मुझे लगता है भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह स्थिति नजर नहीं आई। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड श्री रेवंत रेड्डी दैट इन द दो भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी respected and revered all over the world and all over India, but Andhra and Telangana is considered to be the place of Bhagwan Venkatesh. And in Bhagwan Venkatesh temple, every day Sri Ram Darbar is being worshipped and it is called Sri Raghunath Parivaram. And I would like to ask Sri Revant Reddy and all other Congress leaders, there is a very famous phrase which is used, that Bhagwan Venkatesh is considered to be of the family of Bhagwan Ram, and the name Venkat Raman is very much used in the entire southern India. But unfortunately, those whose whole sole agenda is to divide India, Britishers use the concept of divide and rule, but Congress concept is different. Divide the Hindus for the rule of the Muslims. Divide Hindus for the Muslim rule. And that's why Rahul Gandhi has categorically and deliberately has chosen a constituency which is having a Muslim majority. And in this context, I would like to say that if they want to divide the gods of Hindu society, I think the Semitic thought process have engraved their mind in such a way. It is the Semitic process ki ek Bhagwan ko manenge dusre ko nahi. Agar aap masjid mein jayenge to church mein nahi ja sakte, aur church mein jayenge to masjid mein nahi ja sakte. Magar hamare yahan koi samasya nahi hai. Aap mandir mein jaiye, gurudware mein jaiye, Baudh vihar mein jaiye, Jain vihar mein jaiye, दरगाह पे भी चले जाते हैं और चर्च में भी चले जाते हैं, तो हिंदू धर्म से बाहर नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के ऊपर लगता है इस्लामिक प्रभाव मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते चलाते इस सीमा तक पैबस्त हो गया है कि वो अब हिंदू धर्म के भगवानों को भी सीमेटिक धर्मों यानी इस्लामिक और क्रिश्चियन नजरिए से देखने लगे। और अब मैं इस विषय का शास्त्रीय जवाब देता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के एक बार राहुल गांधी बोले जरूर थे कि मैं हिंदू धर्म का अध्ययन के लिए वेद पुराणों के साथ पढ़ रहा हूं, उन्होंने पढ़े बढ़े तो कुछ होंगे नहीं, तो मतलब बिल्कुल पक्का ही पता है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जो है वो गरीबों के देवता है और भगवान राम अमीरों के देवता है, ऐसा विचित्र उदाहरण देने वाला विलक्षण बुद्धि बालक ही हो सकता है या दिमागी नक्सल हो सकता है। अब मैं बताना चाहता हूं, कुबेर हमारे यहां धन के अधिपति देवता है और शिव महापुराण में भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कुबेर मेरे पुत्र के समान है। अब बताओ है। अब आइए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसकी पूरी नगरी सोने की थी, वो था रावण, सोने की लंका। और अगर शिव तांडव स्त्रोत आप सुनते हो तो उसके अंतिम छंद में कहा गया है कि जो इसका नित्य प्रति भजन करता है, तो रावण रचित शिव तांडव स्त्रोत है, उसमें कहते भगवान शिव इसको हाथी घोड़ों से मणिराभूषणों से युक्त निरंतर रहने वाली संपत्ति देते हैं। और भगवान राम के भक्त कौन है? हनुमान जी, वनवासी, गिरिवासी, ठीक, जामवंत जी, माता शबरी, निषाद राजगुह। इसीलिए हम, और यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, संपूर्ण रामचरितमानस भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं और भगवान शंकर स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान ने, यानी सहस्र विष्णु के नाम लेने के बाद भी मैं भी राम का नाम का जप करता हूं। ये कौन कह रहा? भगवान शंकर। और सहस्र विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है वो एक राम का नाम लेने को मिलता है। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? जब लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो इस रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं रामस्य ईश्वर यह सह रामेश्वरम, जो भगवान राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है, नाम भी रामेश्वरम ही है। अर्थात यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग इसमें विभाजन की दृष्टि से देखते हैं उन्हें हिंदू धर्म का क ख ग भी नहीं पता है, या फिर वो उस विभाजनकारी मानसिकता के टूल बने हुए हैं। और फिर हां यह जरूर है, जो राम विरोधी होकर भगवान शिव को भजता है वो रावण जैसा ही होता है। और यह बात भी मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में यह लिखा है कि भगवान राम और माता सीता कौन है। उनके लिए लिखा है सीता जी के लिए अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। यही अनादि शक्ति है जो भगवान शंकर के अर्धांग में सदैव विराजमान रहती है। और भगवान राम ने स्वयं बोला है, कांग्रेसियों को बुरा लगेगा जो मैंने बात बोली है, यदि राम के प्रति विरोध करके कोई भगवान शंकर का की भक्ति का दावा करता है तो वो उसी वृत्ति का प्रतीक होता है जिस वृत्ति के प्रतीक राक्षस होते हैं। इसका प्रमाण दे रहा हूं, भगवान राम रामचरित मानस में कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास ते नर करहिं कलप भर घोर नरक मावास। अर्थात यदि कोई शंकर जी को प्रिय कहके मेरे से द्रोह करता है और मेरे को प्रिय कहके भगवान शंकर से द्रोह करता है तो एक कल्प, वैसे इनकी तो कैलकुलेशन में तो 7,000 साल पहले दुनिया बनी थी, 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी, वैसे कल्प 30 करोड़ साल से ऊपर का होता है, वो एक कल्प तक, ब्रह्मा जी के कल्प तक वो तो कई ट्रिलियन ईयर्स का होता है, उससे भी ज्यादा, तब तक वो नरक में वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमें यह स्थिति बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन लोगों ने, और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव के कोने का नाम शिव शक्ति रखा, आपके जमाने में भी एक स्थिति आई थी जहां भगवान शिव की प्रति भक्ति का विषय उभर कर सामने आया था, यदि उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। 1 जुलाई सन 2012 को यूरोप की सन लेबोरेटरी में ब्रह्मांड का मूल कण खोजा गया था, हिग्स बोसॉन, और उस सन
1: Well, so that is the press conference that continues with regards to the BJP taking pot shots with regards to what Revanth Reddy had said yesterday and several other matters that have come up. On that note, we are wrapping up the bulletin this hour right here. But do stay tuned as we come back after this break on the other side with all of the latest developments on all the top stories. Thank you for watching.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: आगे की है,
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.
4: यार लोन भूल गया मैरी।
5: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
7: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अकोमोडेट ऑनलाइन क्लासेस।
9: A decision that became the starting point of a much bigger story.
10: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang raped about 7 minutes from their college.
9: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
11: Even if it's the front of the college or the back side of the college, we are just unsafe.
9: We followed the story. We asked the questions.
12: जो लोग हैं फिजिकली असॉल्ट करते हैं बच्चों को।
13: We need the protection.
14: That's your main demand.
9: We stood up for her.
15: The faculty has told these girls, all of them, that they cannot speak to the press.
9: India Today, always standing up for her.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कहां से ले आया? एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको देके पूरा लूट कर लिया। हमारा बंगाल में खाली 92 लाख लूट किया, पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ से ज्यादा लूट किया। और उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के ईआरओ को पूरा डेडलॉक कर दिया, पूरा सिस्टम को खतरा कर दिया। इसको रहने का एक मिनट भी जरूरत नहीं है, अभी से अभी इसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो हम जनता को भी विनती करते हैं, जो प्रोग्राम लिया है इंडियन एलायंस में खड़गे जी बताया, उसमें हम लोग सब शामिल होंगे। हम लोगों को तो घर से निकालने नहीं देता है, हम देखते हैं, हम लोग को निकालने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? हम राहुल जी को, हम खड़गे जी को बोलेंगे, हम और ज्यादा बोलने नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकतंत्र वापस आएंगे और डेमोक्रेसी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेंगे, ये हमारा वादा है। इसके लिए जान अगर खतरे में जाएगा, वी आर रेडी टू डू इट। ओनली वी वॉन्ट योर सपोर्ट, ऑल द एनजीओस, द स्टूडेंट्स, द यूथ, द महिला, द गर्ल चाइल्ड, माई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, ऑल वी वॉन्ट यू सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।
1: दो मिनट राहुल जी, नहीं मैंने बोला, आपका बोलना, आप एलओपी है, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, तो आपका बोलना अलग है, मेरा बोलना अलग है। आखिरी बस इसके बाद खत्म करेंगे, आप बोलिए प्लीज।
2: थैंक यू खारगे जी, नहीं काफी अच्छी चर्चा हुई। मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड। डजंट मैटर हाउ सीनियर दे आर, हु दे आर, इंडियन डेमोक्रेसी इज बिगर देन एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री। सो दिस इज द डिस्कशन दैट वॉज हेल्ड। देर वॉज ऑल्सो फीलिंग इन द रूम that the opposition has been quite successful in putting across to the people of India that elections are stolen, that Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped. Again, I also mentioned to all the opposition leaders that they are the collective defenders of the Indian Constitution. And it is an honor for us to work together, and we are confident that over the next few months we will make serious changes in the country. Thank you.
3: No questions, please. Dhanyavaad. Thank you very much. Dhanyavaad. Thank you.
4: Great. I got two. Oh, come on.
5: Yes, sir. Two incidents.
4: Where do you get them from?
5: Here.
6: Right, so that was the opposition leaders, India bloc, talking about what really underwent in the meeting. And now some important pointers that Khadge ji raised. One is that they are going to have a Save Democracy rally from October 2nd to October 8th, where opposition MPs, in fact NGOs and other activists who they feel should come and save the democracy, would go and carry out marches, and it would be sort of an awareness drive for all the citizens as well. They will be marching to EC on October 6th. This is all the opposition MPs. And then opposition is also going to seek a president's appointment to understand in October 2nd week, and to raise their concerns when it comes to the stealing of elections and the kind of address the constitutional barriers in stealing of elections will be raised here as well. Another point being raised is that they are now deciding to hold a big rally somewhere in the time of October to November. The date is yet still undecided. In fact, Khadge mentioned that this march towards the EC would have happened today.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है, आज उसके ऊपर भी मीटिंग है, बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तैयारी 403 सीट पे चल रही है, रात दिन काम चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।

0: are watching India Today.
1: Four-year-old video of harassment of Israeli woman has sparked outrage. Now, speaking exclusively to India Today, she recalled the incident and said she initially thought the men approaching her wanted a selfie but moved away after she refused. While condemning the harassment, Kovo said she loves India, believes the incident does not represent the country and wants to return. She has also urged people to ask tourists politely before taking photographs and respect personal boundaries and consent. A video dated October 9, 2022 has resurfaced online and it shows an Israeli national being harassed. But now before that, we have more coming in from the political side of things where we are looking at this.
2: It is Sunya Vijan. 100% hatasa aur haar ka advance bahana. आने वाले चुनाव के पहले ही भूमिका हार की बना दो, ये अभी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक कार्यक्रम अनाउंस किया गया है, सेव डेमोक्रेसी मार्च। ये सेव डेमोक्रेसी मार्च नहीं है, ये सेव डायनेस्टी मार्च है, परिवार बचाओ अभियान। एक परिवार कैसे बचा रहे, लेकिन जनता ने तय किया कि अब परिवारवाद की राजनीति चलने नहीं देंगे। राहुल जी, बंगाल चुनाव में वीडियो, बंगाल चुनाव के पहले वीडियो जारी करके कहा था, बंगाल में बीजेपी की विजय का कारण चुनाव के पहले ही राहुल जी बता चुके थे और उन्हें कहा था कि ममता बनर्जी की गलतियों के कारण बीजेपी जीत रही है। ऐसा ही आर के कारण नहीं, ममता जी की गलतियों के कारण बीजेपी जीत रही है। जब भी असली कारण तुमने बता दिया, कहां ऐसा यार, तब कहां बोले। और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब ये इंडी गठबंधन, राहुल जी, खड़गे साहब, ये या तो अदालतों पर या संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने लगते हैं। अगर कोई अदालत मन के मुताबिक फैसला ना दे तो न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। राहुल जी को जवाब देना चाहिए। विदेशी धरती पर जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की वकालत करते हैं। ये देश की बात करेंगे, देश के लोकतंत्र की बात करेंगे, और सारी दिक्रमें करके भी जब जनता के दिल से मोदी जी को नहीं हटा पाए, एक बार फिर अराजकता और देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं ये। लेकिन मित्रों, ये वोट चोरी की बात करने वाले खुद अपने आप को आके भ्रष्टाचारियों को, गड़बड़ करने वालों को अब जनता वोट नहीं देती। जनता वोट परफॉर्मेंस के आधार पर देती है, काम के आधार पर देती है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। 50 से ज्यादा बार निर्वाचित सरकारों को भंग करने का पाप कांग्रेस ने किया है। मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह बदलने वाले अगर कोई थे तो कांग्रेस के लोग थे। देश में आपातकाल लगाया तो कांग्रेस ने लगाया। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। शुद्ध वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है। अगर वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं हुई तो लोकतंत्र मर जाएगा। वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों वो व्यक्ति जो इस दुनिया में है नहीं है, जीवित ही नहीं बचा, उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों होना चाहिए? जो शहर में गांव में 2 जगह रह रहा है तो 1 जगह नाम क्यों नहीं कटना चाहिए? जो देश का नागरिक ही नहीं है उसका नाम क्यों वोटर लिस्ट में होना चाहिए? वोटर लिस्ट का तो शुद्धिकरण होना ही चाहिए। सच बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन में ही एंटी आईएनसी है, एंटी इंका, इनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपके कुछ प्रश्न हो तो कृपया रखें, एक एक एक एक करके पूछो।
4: सर, मेरा सवाल ये है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाहे राहुल गांधी हो, इलेक्शन कमीशन के जरिए आप पर, आपके जरिए इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों में मिली भगत है, वोट चोरी कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, पूरे देश भर में आपके ऊपर गुनगुन का आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या करिए, आखिर क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है,
2: हार की हताशा, अगर जीत गए तो लोकतंत्र जिंदाबाद, हार गए तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद, यह हार की हताशा है।
3: नीरज जी,
5: सर, समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश यादव जरूर नहीं है, लेकिन उनके दो सांसद बैठक में शामिल हुए, इसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एक तरफ वो रहना।
1: Well, that was Shivraj Singh Chauhan addressing the claims made by the opposition. Now, let's look at how in Uttar Pradesh's Kushinagar, the Narayani River surged after heavy rainfall in Nepal, breaching an embankment and inundating homes and villages. Now, with rescue operations underway, families are being evacuated to safety as the administration and disaster response teams battle the rising waters. Take a look at how the flood fury has impacted the region in this report.
6: Flood fury in Uttar Pradesh has left the state in ruins. The Kushinagar district in particular is submerged in flood waters. After heavy rainfall in Nepal, a sudden rise was recorded in the water level of the Narayani River. Several people living near the river areas were rescued with the help of ropes, while multiple houses got submerged after the river breached a major embankment. The administration advised residents living in a 10-kilometer radius to evacuate the area.
7: मतलब जैसे वहाँ राशन पता ही सब कुछ डूब गया और वहाँ पे पानी अगला प्रशासन वहाँ पे जा नहीं रहा है, उधर बोट भी नहीं जा रहा है कि हम लोग आए, इसलिए अब हम लोग पैदल आना पड़ा।
6: Many families were forced to move to safer locations, carrying whatever essential belongings they could save.
8: कई लोग तो यहाँ से भाग गए, लेकिन कईयों के सामान इतना ज्यादा, इतना अधिक था, वो नहीं बचा पाया सामान को। जिनके गांव, ये गांव अगर किनारे है तो यहाँ पर डैमेज उतना नहीं हुआ, यहाँ पर यहीं यहीं तक पानी आया, लेकिन जो गांव बीचों बीच थे वो तो समझ लें कि वहां तो ऊपर तक पानी पहुंच गया, काफी ऊपर तक पानी पहुंच गया। बहुत भयावह मंजर रहा उस वक्त, जिस वक्त ये पूरी बाढ़ आई, और बाढ़ तो अभी भी है और लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, बच्चे बूढ़े सब इससे परेशान नजर आ रहे हैं। सामने गेट, अगर कैमरामैन गौरव आप दिखा पाए, उस गेट को दिखा दें और खुद आप देखें कि जो एंट्री गेट इस जगह का है, वहां के क्या हालत है।
6: Chief Minister Yogi Adityanath took immediate cognizance of the situation and conducted an aerial review of the affected areas.
9: हर पीड़ित परिवार को हम लोगों ने राहत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, टीम ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। 5000 पैकेट सूखा राहत का उपलब्ध कराया गया है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, अगर किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी मैंने आदेश दिया कि तत्काल उस परिवार को एक नया आवास उपलब्ध करवाएं।
6: NDRF, SDRF and police teams continue to remain deployed on the ground. The rescue teams are also carrying out operations in several locations. Bureau Report, India Today.
1: And that was all that we could pack for you in this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
0: You are watching India Today.
10: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी।

0: Congress certainly want to do this type of massive agitation for save democracy in this country with the help of all political movements, political parties. So we will hear, I think there will be a valuable suggestion from the senior leaders of India Alliance. After that, we will sit and we will formalize the clear action plan for the future agitation.
1: इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सोल सर्चिंग करनी चाहिए. ये ऐसे ही नहीं है कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, और सबूत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लाया. सबूत अखबार के इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए सामने आया है. अब बजाय ये कि इसको छुपाने की कोशिश हो, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को अपने कामकाज में सुधार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं और इस तरह के हरकत जो हैं वो ना हों.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: आई एम वेरी क्यूरियस दैट वाई डिड देयर रेफरेंस गो टू द कैबिनेट सेक्रेटरी वर द टू कमिश्नर्स सबमिटिंग द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज एंड अनब्राइडल्ड पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू द कंट्रीज टॉप ब्यूरोक्रैट बिकॉज इफ दे हैड सब्सटैंशियल इशूज अराउंड द वर्किंग ऑफ द कमीशन देयर रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन सम वेज इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो देयर फॉर आई एम अनक्लियर एज टू वॉट ट्रांसपायर्ड बिटवीन दीज ऑब्जेक्शंस and the final decision.

0: महिला के साथ में दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल का, उसमें दोनों भुक्त गिरफ्तारी हो चुकी है। भुक्त गिरफ्तारी आज दिन के क्रम में ही हो गई थी, आप लोगों को जानकारी भी दी गई थी। जो दूसरा मेन अभियुक्त रोहित सहनी नाम से व्यक्ति है, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है।
1: कहाँ से सर आपकी
0: यह
1: सामने?
0: अरेस्टिंग हुई है मोहिद्दीनपुर जो पड़ता है समस्तीपुर में, वहां से जाके हमारी टीम ने अरेस्ट किया। अब उससे पूछताछ में सर बात पड़ेंगी, डेफिनेटली यहाँ से तो नहीं पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया आउटसाइड जो हमारा जिला है वहां से। बाकी सारी बिंदु अनुसंधान का पॉइंट है।
2: बेगूसराय में होटल में युवती के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

0: पूरी घटना 27 सितंबर को रोहित के द्वारा अंजाम दिया गया था और युवती को होटल के कमरे में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वीडियो पिटाई करके बनाया था, नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। और इस मामले के बाद 28 सितंबर की रात नगर थाने में दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें से जो आरोपी मुख्य आरोपी है रोहित कुमार, उसके बहनोई को गिरफ्तार दिन में किया गया था। और उसके बाद अब रोहित कुमार की गिरफ्तारी देर शाम समस्तीपुर जिले से की गई है। गिरफ्तारी के दौरान जो रोहित कुमार है वह घायल भी हुआ है और इस पूरी गिरफ्तारी के लिए सदर DSP इमरान अहमद के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था, जिसने नगर थाने पुलिस के साथ रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
1: जिस हिसाब से घिनौना अपराध बिहार में हम लोगों ने बेगूसराय में और गया में भी देखने को मिला है, आप कह सकते हैं बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो है कानून से ऊपर हो गए हैं। आम जनता पे पॉक्सो लगेगा लेकिन मुख्यमंत्री पे पॉक्सो नहीं लगेगा, FIR दर्ज नहीं होगा, बकायदा सारी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद भी बिहार में जिस हिसाब से बलात्कार के मामले, महिलाओं पे अत्याचार के मामले आ रहे हैं, बिहार में पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ राक्षस राज, गुंडा राज जो है कायम हो गया है।
2: नो स्कूल, नो घर, नो पड़ोसी, नो रिश्तेदार, नो शेल्टर होम, नो कोचिंग, न अस्पताल, न होटल, न सड़क, कहीं बच्ची सुरक्षित। जो घटना गया में हुई है और जो घटना बेगूसराय में हुई है, और उसके बाद नेता कहते हैं जो आती है बात तुरंत कार्रवाई होती है, तो एक काम करिए, एक बार अपने घर में ये बात आने दीजिए, तब कार्रवाई कीजिएगा।
3: The past 1 month in itself for what was supposed to be a Naya Bihar is not looking good. It could be a big test for the BJP government in Bihar. What is happening? And all of this, remember, caught on camera. I wonder how many instances that couldn't be reported or were not with evidence. For example, it started especially with the month of September, which was the recent one that we are quoting first. A woman is abducted, a young woman is assaulted and allegedly sexually assaulted. On camera, the man knew what he was doing, came from Begusarai. But by the time the Begusarai videos emerged, we've already been reporting constantly about the cases of crimes that are emerging against women in the state. Let's take a look at the action that has been taken. For example, remember in Samastipur, on camera, men are happily groping this woman, assaulting her while she's pleading to let go. But moral policing is what in the month of September some men believe they need to do. In Gaya, Bihar, again, a girl and a boy in a public space, which seemed to be like a field, are grabbed by a mob. The woman, especially the young woman, is assaulted again, possibly of a minor age. Whatever they may be doing, who gave the right to these random stranger men to start groping and assaulting the two friends or even if a couple? But it was in Jamui where clearly there was a lot of outrage about. A minor girl and a boy caught by these men, one girl being seen clearly molested, grabbed by her private parts by the man in that orange mask who was then eventually arrested as well. The boy also that was then at least trying to protect the girl who was with her. But it was again in Banka, one of the first instances that was reported. A boy and girl harassed and assaulted. We have to, of course, blur all the visuals, give it the guidelines and the safety of the victim's identity. But it's a reminder that there is something wrong that the government, the society, the families especially need to take care about how the boys are behaving in public. On that note, I'm wrapping up the crime scene, but stay tuned. I have a big international news update coming in right after a break. United States moving out of Iraq after 2 decades. The latest on that with the international reports that are coming in. Let me tell you what are we looking at, the US forces that have exited Iraq.

0: मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड. डजंट मैटर हाउ सीनियर दे आर, हु दे आर, इंडियन डेमोक्रेसी इज बिगर देन एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री.
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी पांच पांच साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं तीन बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.
4: यार लोन भूल गया मैरी।
5: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
7: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: The SIR process, as it was, the architecture of the SIR process was deeply flawed. The fact is, you've got a centralized software system which is overruling decisions taken by EROs. Goa is providing a clear example. 97 verified voters. And you don't address those emails, you don't address any of those issues. So it's not just the election commission split wide open. It's the process, the decision making that needs sunlight.

0: तो मैं कांग्रेसियों से एक ही बात कहता हूं, जनता के बीच जाके मेहनत करो तो जनता का आशीर्वाद लो। इस तरह से जो लिफाफाबाजी करते हुए ठीक नहीं है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? कांग्रेसी भी बार बार कहते हैं कि हम लोग को डुबा देंगे, लेकिन खुल के नहीं बोलते और डुबा रहे हैं। तो एम्पायर तो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के।
1: देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादा पर चोट पहुंचाए, और चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद है, और उस पर आक्षेप लगाना, और पूरे दुनिया आज भारत की तरफ देखती है, चुनाव प्रक्रिया की तरफ देखती है, चुनाव आयोग के कामयाबी की तरफ देखती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मुद्दों का अभाव हो गया है।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स

0: This time, the trap shooter combined with veteran male shooter Kainan Chennai to script history for India by winning the mixed team trap title. Remember, this is India's first medal in the mixed team trap shooting at the Asian Games. The Indian pair hit 34 targets in the final to finish two clear of teams from Qatar and China, respectively. The victory gave Neeru her second gold medal in shooting in as many days after she won the women's individual trap title on Tuesday. She had also helped India take silver in the women's team event. Neeru thus finished her Asian Games 2026 shooting campaign with two gold medals and a silver and became the first Indian shotgun shooter to win two titles at a single edition of the Games. Kiran, meanwhile, added another Asian Games gold to his collection. The 35-year-old Indian shooter had won the men's trap title and individual bronze in Hangzhou.
1: It's been a golden morning for India and it just keeps getting better. Another gold medal for...
0: Meanwhile, India's Jyoti Surekha, Venon, Prithika Pradeep and Chitika Taniprati defeated China by 4 points in women's compound team final to win gold and retain their Asian Games title. India led throughout the match and held off China's late challenge to seal victory. India's score of 238 points also equaled the women's compound team world record set by South Korea at the 2014 Asian Games in Incheon. Jyoti was also part of the Indian team that had won the gold in the same event, last edition of the Asian Games. But the star was Prithika, who produced a flawless performance, not missing a single arrow in the final.
2: Of this troika, taking those final shots with the clock winding.
3: अच्छा लग रहा है, थैंक यू. हमने बस अपना बेस्ट कोशिश किया और हमने कॉन्फिडेंस से खेला और इसलिए हम गोल्ड मेडल जीत पाए.
4: बहुत अच्छा लगा. सेमीफाइनल एंड फाइनल में हमने काफी अच्छा शूट किया. हम बस एक दूसरे को यही याद दिला रहे थे कि हम अपना बेस्ट देंगे हर शॉट में. अगर कुछ एक शॉट ऊपर नीचे भी हो गया, बस उसको भूल के आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट शॉट में फिर से हमारा बेस्ट देंगे. स्पेशली ऐसे गेम्स के वेन्यू पे जब हम गोल्ड जीतते हैं इंडिया के लिए, ऑब्वियसली आर्चरी हो या दूसरा डिसिप्लिन हो, सबका रीच बढ़ता है. गेम के लिए बहुत लोग आगे आते हैं देखने के लिए एंड इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए.
0: Meanwhile, Jyoti Surekha Venom showed her class in the Asian Games of 2026 by securing a historic team gold in the compound archery event. And she spoke to my colleague about that title.
5: So over the years, aap apni journey ko kaise dekhti hain aur India ka archery mein ye jo promotion hai, aap usko kaise dekhti hain?
6: आई थिंक इंडिया में आर्चरी एज अ स्पोर्ट बहुत ग्रो कर रहा है एंड बहुत यंग आर्चर्स है जो आ रहे हैं. आई मीन यंग मैं कहूँगी चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स जो भी है वो टेकअप कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट आर्चरी में, वो भी सीरियस वे में. एंड आई थिंक फैमिलीज का सपोर्ट है तभी ये सब मुमकिन हो पा रहा है. स्पोर्ट्स को लेकर जो मैं कहूँगी कि एक उनका नजरिया बदल गया कि पहले होता था कि स्पोर्ट्स बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे ज्वाइन करने के लिए, बट आई थिंक अभी सबका नजरिया बदल रहे धीरे धीरे एंड वो अच्छा है एक तरह का, क्योंकि इंडिया एज अ स्पोर्टिंग नेशन ग्रो करने को मिलेगा सिर्फ आर्चरी नहीं सारे स्पोर्ट्स में, तो बहुत अच्छी बात है. एंड स्पेशली मैं आर्चरी की बात करूँ तो कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे है जो अच्छे स्कोर्स मार रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया कि एक पॉइंट भी आपको टीम में सेलेक्ट होने को मिलता है एंड एक पॉइंट की वजह से भी आप रह भी सकते हो.
5: हमने एक चीज और की है ओवर द इयर्स, वो ये थी आर्चरी को कई बार ऐसा लगता था कि शायद लोग इतना जानते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉक्सिंग देख लिए वहां पर लवनीता है मीरा की वजह से, वेट लिफ्टिंग में नीरज की वजह से, जेवलिन आई थिंक अब आपके नाम की वजह से आर्चरी का भी एक उस तरीके का एक लेवल पहुंच रहा है. बहुत बार आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता था कि शायद आर्चरी के ऊपर में वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनको ज्यादा लोग जानते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता हो कभी यार कि हमें कोई क्यों नहीं जानता, बट अब मेडल्स के जरिए शायद आप स्पोर्ट को भी जानेंगे और आपको भी जानेंगे.
6: लाइक ऐसे तो नहीं लगता कि हमें क्यों नहीं जानते, बट एटलीस्ट हमारे स्पोर्ट को क्यों नहीं जानते वाली क्वेश्चन रेज होती थी, क्योंकि मे बी इतना हमारा स्पोर्ट को लेकर कहीं मैं कह सकती हूँ कि इतना अप्रोच नहीं, आई मीन नेटवर्क में नहीं था, क्योंकि कहीं ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी या कुछ भी नहीं होता था. बट आई थिंक वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा लीग भी स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से भी अच्छा रीच मिल रहा है मे बी लोगों को. एंड वैसे भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि आर्चरी को फ्रॉम द रूट्स ग्रो करें, तो आई थिंक इन सब का ही वो रिजल्ट है.
0: But Chitika Taniprathi's gold rush didn't end there. She teamed up with Sahil Jadhav and won another gold in the compound mixed team event after a dramatic shoot-off against South Korea. It was a tense contest that finished tied at 157 versus 157 that forced a shoot-off. In the shoot-off, Chikita and Sahil both found the tens while South Korea's final arrow landed in the nine, handing India the gold medal. The victory also meant that India have retained their compound mixed team title from the last Asian Games. And by the way, it was double delight for the Indian team because with this goal, they've also secured a quota place for India at LA 2028, where the event will make its Olympic debut.
7: सबसे पहले मतलब अपने से पहले इंडिया के लिए हम मेडल ला पाए और फिर अपने देश का नाम रोशन किया, झंडा ऊपर सबसे पहले आया तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी.
8: Like when it was starting, I am shooting really good, and in between I felt a little bit nervous. Then I came back. I trusted myself.
0: Meanwhile, one gets two, and guess what? Two got India three. It was a hat trick of gold by India compound archers as the team of Sahil Jadhav, Ganesh Mani, and Ratnam Kushal Das defeated China by 1 point in a thrilling men's compound team final to win the gold medal. The Indian team trailed at the halfway stage but produced a flawless final end with all three archers hitting tens with their final arrows. China's eight in the final gave India the advantage before Sahil, Ganesh and Kushal held their nerve to seal victory. It was India's third archery gold of the day. The compound sweep pushed India's tally of 10 golds at Aichi Nagoya.
2: What a clean sweep for India. The women's team gold in compound archery, the men's team gold in compound archery, the mixed team.
0: Meanwhile, one of the best medals that India got in this Asian Games was that gold medal in athletics in the 4 into 400 meter relay. And here's what the women's team said after their historic gold medal at that relay.
9: लास्ट टाइम 2022 में सिमिलर हो गया था, हम लोग कंटिन्यूस गोल्ड जीते थे. आई वॉज अ पार्ट ऑफ 2014 एंड 2018 टीम, सो वी वॉन्टेड टू विन गोल्ड नो मैटर वॉट द टाइम इज. वी ऑल रन रियली वेल एंड 11 साल एग्जैक्ट 8 पे मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था. सो एंड दिस इज माई सिक्स एशियन गेम्स मेडल. आई एम सो हैप्पी एंड इवन विद्या सिक्स मेडल. सो द होल टीम दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज एथलेटिक्स में दे वर वेटिंग फॉर गोल्ड एंड आर रिलेटिव वन द गोल्ड. सो फॉर दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी.
10: So I want to see the national anthem. Yeah. First, I want to hear the national anthem.
9: Yes. Then today, we like this Asian Games, we never heard. They were waiting when they will get the gold medal. So everyone had hope on us. Banur sir, he told us, you have to win gold. You have the caliber to win. So with this motivation and with all the Indians' prayers, our parents, our well-wishers, everyone, we won gold.
11: हमारी यूपी गवर्नमेंट में योगी जी ने एक पॉलिसी बनाई है, जो गोल्ड लेगा उसको डीएसपी देंगे. तो मेरा लास्ट टाइम वो मिस हो गया, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगले साल आऊंगी अगली बार एशियन गेम्स में और गोल्ड लेके जाऊंगी. अब की बार मैं आने से पहले यूनिफॉर्म का नाप दे के आई हूँ और जाते ही वो सिल जाएगी और उसको पहनूंगी. यस, यही एक मोटिवेशन था.
12: सबसे पहले तो मुझे मेरी टीम ने सबने बोला किरण तुझे अच्छा भागना, अगर तू अच्छा भागेगी तो हम सब अच्छा करेंगे. तो मेरे तो अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर था, मुझे लग रहा था कि मैंने खराब कर दिया तो पूरी टीम का वो हो जाएगा. तो मैंने अपना 100% दिया है और बाकी मेरी टीम ने उसको 200% बना दिया.
0: Golden girls for India there in that interaction, all of them talking about their dreams. And good news continues for India at the Asian Games. The Indian women's hockey team continue to dazzle in the Asian Games as they have reached the final for the first time since 2018. There is a lot at stake for women's side after a disastrous last couple of years. In the semi-final, India were initially frustrated by South Korea and were held to a goalless first two quarters. However, Ishika and Salima Tete managed to score two goals as India beat the five-time Asian Games gold medalist 2-0 to book a spot in the final. In the summit clash, India will take on China. It will be a grudge match with China, the defending champions of the Asian Games. On the other hand, India are looking to win gold in Asian Games women's hockey for the first time since 1982. But India can take heart from the fact that they held China to a 0-0 draw during the recent Hockey World Cup. Aside from winning the gold medal, the stakes are higher at the Asian Games. The team that wins the gold also secures a spot at the 2028 LA Olympic Games. Talking about women power at the Asian Games, boxing star Lavlina Borgohain continued her march towards winning her first gold at the Asian Games in the semi-finals of the women's 75-kilogram category. Lavlina beat Kazakhstan's Natalie Bogdanova in a closely fought encounter 3-2. The Olympic medalist from Assam is aiming to improve upon the silver medal she won in the middleweight category 3 years ago in Hangzhou. Remember, earlier this year, the Indian star also won a silver medal at the Commonwealth Games. With this, India now have three boxers in the Asian Games final, Parveen Huda, Ankush Pangal being the other two.
13: This is a fantastic result.
0: Those are all the updates that we have from the Asian Games. As I mentioned at the start, great day for the Indian contingent. We'll take a short break here on India Today. News and updates continue on the other side.

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार, पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात
2: सुनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का ये हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: village in Maharashtra has put itself on sale. People of Tulsi village in Solapur want any of India's rich industrialists to buy them out. All they want in return is water. Villagers claim they resorted to this unique protest after their pleas for water were ignored by authorities.
1: आप बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ कर देते हो, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, हम पर बस इतना ही कृपा कीजिए सरकार कि हमारा गांव जो है ना वो खरीद लीजिए।
2: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गांव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है, कोई भी माइका लाल हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: The Sina Madha Lift Irrigation Scheme, which draws water from the Ujjaini Dam, a lifeline for Madha Taluka, has been operational since 2000. But Tulsi village somehow wasn't included. After long protests, Tulsi was finally covered under the scheme, but water is yet to reach it. So, the villagers are totally dependent on tankers, especially in this drought year.
3: आपके बच्चे किधर जाते हैं, स्कूल में, नौकरी में?
4: बच्चे स्कूल को ये खाए, उधर पुणे को, ये गांव को आए।
3: इधर नौकरी नहीं क्या कुछ?
4: नहीं, नौकरी नहीं, हमारे कैश नहीं ना, पानी भी नहीं, काम आ नहीं, कैसा खाने का, कैसा पीने का, रहने का कैसा?
3: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
5: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रही गांव में, पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या इतना हम कैसे लड़की देगा, लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: नो वाटर टू ड्रिंक, नो वाटर फॉर फार्मिंग. Tulsi is desperately looking for help. With Nitin Shinde, Bureau Report, India Today.
6: Okay, that's all that we could pack in on the show tonight. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

0: जानते हैं, बट एटलीस्ट हमारे स्पोर्ट को क्यों नहीं जानते वाली क्वेश्चन रेज होती थी, क्योंकि मे बी इतना हमारा स्पोर्ट को लेकर कहीं मैं कह सकती हूँ कि इतना अप्रोच नहीं, आई मीन नेटवर्क में नहीं था, क्योंकि कहीं ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी या कुछ भी नहीं होता था. बट आई थिंक वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा लीग भी स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से भी अच्छा रीच मिल रहा है मे बी लोगों को. एंड वैसे भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि आर्चरी को फ्रॉम द रूट्स ग्रो करें, तो आई थिंक इन सब का ही वो रिजल्ट है.
1: Meanwhile, Chikida Tani Prati's gold rush did not end with that medal that we just mentioned. She teamed up with Sahil Jadhav and won another gold in the compound mixed team event after a dramatic shoot-off against South Korea. It was a tense contest that finished tied at 157 versus 157 that forced a shootout. In the shootout, Chikita and Sahil both found the 10s while South Korea's final arrow landed in the 9, handing India the gold medal. The victory also meant that India have retained their compound mixed team title from the last Asian Games. And by the way, it was double delight for the Indian team because with this goal, they've also secured a quota place for India at LA 2028, where the event will make its Olympic debut.
2: Congratulations. And well done.
3: सबसे पहले मतलब अपने से पहले इंडिया के लिए हम मेडल ला पाए और फिर अपने देश का नाम रोशन किया, झंडा ऊपर सबसे फहराया, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी.
4: Like when it was starting, I am shooting really good, and in between I felt little bit nervous. Then I came back. I trusted myself.
1: Meanwhile, one gets two, and guess what? Two got India three. It was a hat-trick of gold by Indian compound archers as the team of Sahil Jadhav, Ganesh Maniratnam and Kushal Dalal defeated China by 1 point in a thrilling men's compound team final to win the gold medal. The Indian team trailed at the halfway stage but produced a flawless final in the end, with all three archers hitting 10s with their final arrows. China's 8 in the final end gave India the advantage before Sahil, Ganesh and Kushal held their nerve to seal victory. It was India's third archery gold of the day. The compound sweep pushed India's tally to 10 golds at Aichi Nagoya.
2: What a clean sweep for India. The women's team gold in compound archery, the men's team gold in compound archery, the mixed team gold in compound archery for India.
5: Absolutely fantastic. And
1: now, all medals are very special at the Asian Games. Gold medals are even more special. But there was one medal which was extra special. Why do I say that? Because one, it came in athletics. And secondly, it came in a very high-profile event that is the relay. And this is what the women's relay team that secured a historic gold in the 4 into 400-meter relay team had to say after their stunning performance. Listen in.
6: लास्ट टाइम 2022 में सिमिलर हो गया था, हम लोग कंटिन्यूस गोल्ड जीते थे. आई वॉज अ पार्ट ऑफ 2014 एंड 2018 टीम, सो वी वॉन्टेड टू विन गोल्ड नो मैटर वॉट द टाइम इज. वी ऑल रन रियली वेल एंड 11 साल एग्जैक्ट 8 पे मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था. सो एंड दिस इज माई 6th एशियन गेम्स मेडल. आई एम सो हैप्पी एंड इवन विद्या 6th मेडल. सो द होल टीम दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज एथलेटिक्स में दे वर वेटिंग फॉर गोल्ड एंड आर रिलेटिव वन द गोल्ड, सो फॉर दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी.
7: So I want to see the national anthem. Yeah. First, I want to hear the national anthem.
6: Yes. Then today, we like this Asian Games, we never heard. They were waiting when they will get the gold medal. So everyone had hope on us. Banur sir, he told us, you have to win gold. You have the caliber to win. So with this motivation and with all the Indians' prayers, our parents, our well-wishers, everyone, we won gold.
8: हमारे यूपी गवर्नमेंट में योगी जी ने एक पॉलिसी बनाई है, जो गोल्ड लेगा उसको डीएसपी देंगे. तो मेरा लास्ट टाइम वो मिस हो गया, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगले साल आऊंगी, अगली बार एशियन गेम्स में, और गोल्ड लेके जाऊंगी. अब की बार मैं आने से पहले यूनिफॉर्म का नाप दे के आई हूँ, और जाते ही वो सिल जाएगी उसको पहनूंगी. यस, यही एक मोटिवेशन था.
9: सबसे पहले तो मुझे मेरी टीम में सब ने बोला, किरण तुझे अच्छा भागना, अगर तू अच्छा भागेगी तो हम सब अच्छा करेंगे. तो मेरे तो अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर था, मुझे लग रहा था कि मैंने खराब कर दिया तो पूरी टीम का वो हो जाएगा. तो मैंने अपना 100% दिया है और बाकी मेरी टीम ने उसको 200% बना दिया.
1: Okay, talking about women power at the Asian Games, the Indian women's hockey team continues.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
1: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का ये हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: नवंबर 1 दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी जो यहां से शुरू होगी कि सबको उसमें भी हमको ये वोट चोरी का और जो जो कुछ राहुल गांधी जी ने बहुत से चीजें पहले से ही बताते आए हैं लेकिन शुरू शुरू में लोग ये समझते थे कि ये उतना ये नहीं वो नहीं ये नहीं, लेकिन अब जब पूरा बाहर निकला है, सरकार के लोगों से ही बाहर निकला है, इलेक्शन कमीशन से ही मेंबरों से बाहर निकला है, अब सबको महसूस हो रहा है जो राहुल गांधी जी पहले बोलते थे वो ठीक है। तो अब इंडिया गठबंधन के ऐसा तो जैसा दीदी भी पहले इसके बारे में बहुत बार आवाज उठाती थी, सारे लोग आवाज उठाए हैं गठबंधन के, लेकिन भरोसा थोड़ा लोगों का या खास करके मीडिया उधर आकर्षित नहीं हो गई हमारे बातों को या राहुल जी के बातों को। अब कम से कम खुला हो गया, सभी लोग आकर्षित भी हो रहे हैं और मोदी जी की ये झूठ जो है ये इलेक्शन के लिए जो जो उन्होंने किया, पहले तो ऐसा ही किया, पहले तो नोटबंदी करके लोगों को लूटा खत्म किया और अब वोटबंदी कर रहे। तो नोटबंदी वोटबंदी ये सब उनके तरीके हैं लोगों के हकूक छीनने का।

0: From viral celebrity moments to new announcements, the world of entertainment has plenty making headlines. Here's a look at the stories grabbing attention.
1: ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब, अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं, एक बाबा को उतार दिया है।
2: Throw them out right now.

0: A village in Maharashtra has put itself on sale. People of Tulsi village in Solapur want any of India's rich industrialists to buy them out. All they want in return is water. Villagers claim they resorted to this unique protest after their pleas for water were ignored by authorities.
1: आप बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ कर देते हो, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, हम पर बस इतना ही कृपा कीजिए सरकार कि हमारा गांव जो है ना वो खरीद लीजिए।
2: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गांव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है, कोई भी माइकलाल हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: The Sina Madha lift irrigation scheme, which draws water from the Ujjaini dam, a lifeline for Madha Taluka, has been operational since 2000. But Tulsi village somehow wasn't included. After long protests, Tulsi was finally covered under the scheme, but water is yet to reach it. So, the villagers are totally dependent on tankers, especially in this drought year.
3: आपके बच्चे किधर जाते हैं, स्कूल में, नौकरी में?
4: बच्चे स्कूल को, ये खाए उधर पुणे को, ये गांव को आए।
3: इधर नौकरी नहीं क्या कुछ?
4: नहीं, नौकरी नहीं, हमारे कैश नहीं ना, पानी भी नहीं, काम आ नहीं, कैसे खाने का, कैसे पीने का, रहने का कैसा?
3: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
5: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रही गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या हम कैसे लड़की देगा, लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: नो वाटर टू ड्रिंक, नो वाटर फॉर फार्मिंग। Tulsi is desperately looking for help. With Nitin Shinde, Bureau Report, India Today.
6: Okay, that's all that we could pack in on the show tonight. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के लिए।

0: A village in Maharashtra has put itself on sale. People of Tulsi village in Solapur want any of India's rich industrialists to buy them out. All they want in return is water. Villagers claim they resorted to this unique protest after their pleas for water were ignored by authorities.
1: आप बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ कर देते हो, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, हम पर बस इतना ही कृपा कीजिए सरकार कि हमारा गांव जो है ना वो खरीद लीजिए।
2: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गांव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है, कोई भी माइकालाल हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: The Sina Madha lift irrigation scheme, which draws water from the Ujjani dam, a lifeline for Madha Taluka, has been operational since 2000. But Tulsi village somehow wasn't included. After long protests, Tulsi was finally covered under the scheme, but water is yet to reach it. So, the villagers are totally dependent on tankers, especially in this drought year.
3: आपके हा? बच्चे किधर जाते हैं स्कूल में, नौकरी में?
4: बच्चे स्कूल को एक है उधर पुणे को, हा? ये गांव को आए।
3: इधर नौकरी नहीं क्या कुछ?
4: नहीं, नौकरी नहीं, हमारे कैश नहीं ना, पानी भी नहीं, काम नहीं, कैसे खाने का, कैसे पीने का, रहने का कैसा?
3: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
5: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रहे गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या हम कैसे लड़की देगा, लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: नो वाटर टू ड्रिंक, नो वाटर फॉर फार्मिंग। Tulsi is desperately looking for help. With Nitin Shinde, Bureau Report, India Today.
6: Okay, that's all that we could pack in on the show tonight. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind, Namaskar.

0: A village in Maharashtra has put itself on sale. People of Tulsi village in Solapur want any of India's rich industrialists to buy them out. All they want in return is water. Villagers claim they resorted to this unique protest after their pleas for water were ignored by authorities.
1: आप बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ कर देते हो, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, हम पर बस इतना ही कृपा कीजिए सरकार कि हमारा गांव जो है ना वो खरीद लीजिए।
2: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो तो हमारे गांव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है, कोई भी माइका लाल हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: द सीना माधा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम द उजानी डैम, अ लाइफ लाइन फॉर माधा तालुका, हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 2000। बट तुलसी विलेज समहाउ वाजंट इंक्लूडेड। आफ्टर लॉन्ग प्रोटेस्ट Tulsi was finally covered under the scheme, but water is yet to reach it. So, the villagers are totally dependent on tankers, especially in this drought year.
3: आपके बच्चे किधर जाते हैं, स्कूल में, नौकरी में?
4: बच्चे स्कूल को, ये खाए उधर पुणे को, ये गांव को आए।
3: इधर नौकरी नहीं क्या कुछ?
4: नहीं, नौकरी नहीं, हमारे कैश नहीं ना, पानी भी नहीं, काम नहीं, कैसे खाने का, कैसे पीने का, रहने का कैसा?
3: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
5: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रही गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या हम कैसे लड़की देगा, लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: नो वाटर टू ड्रिंक, नो वाटर फॉर फार्मिंग। Tulsi is desperately looking for help. With Nitin Shinde, Bureau Report, India Today.
6: Okay, that's all that we could pack in on the show tonight. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.